0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर. शुक्रवार 22 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार.

सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम भारत की रिपोर्ट के अलावा बात कर रहे हैं फेडरल बजट में हुए माइग्रेशन से जुड़े बदलावों के बारे में, और साथ ही बात होगी कोहिनूर हीरे की। जी हाँ, कोहिनूर हीरा, इसके बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? कहाँ से कहाँ पहुंचा? क्यों ना आप हमें बताएं कि ये ब्रिटेन के पास कैसे पहुंचा और भारत में ये कहाँ से था। जो भी आपके पास इसके बारे में जानकारी है मुझे अवश्य बताएं 0439799767 पर। और अभी पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शुक्रवार 22 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टिविस्ट जो गाजा जाने वाले एक फ्लोटिला का हिस्सा थी, उनका कहना है कि इजरायली अधिकारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। नेवे ओकोनर उन 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से एक थीं जिन्हें इजरायली सेना ने मंगलवार को पकड़ा था और अब उन्हें तुर्की ले जाया गया है। पेरू में इंका ट्रेल पर हाइकिंग करते समय एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति की माचू पिचू में गिरने से मृत्यु हो गई। 53 वर्ष का ये व्यक्ति विक्टोरिया पुलिस का सार्जेंट बताया जा रहा है। विपक्ष के नेता एंगस टेलर ने सेनेटर जसिंथा नामपिजिंपा प्राइस का साथ दिया है। सेनेटर जसिंथा ने उस पॉडकास्टर से दूरी बना ली है जिसने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भारत, चीन, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले लाखों माइग्रेंट्स को रोकना चाहिए। शो में आने के दौरान प्राइस ने पॉडकास्ट होस्ट की उन बातों का विरोध नहीं किया जिन्हें उन्होंने भारत, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से माइग्रेंट ग्रुप्स के आने के तौर पर बताया था। एक बयान में प्राइस ने कहा है कि वो पॉडकास्ट होस्ट की बातों से सहमत नहीं है और टेलर का कहना है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मेलबर्न में रात में होने वाले आगजनी हमलों को लेकर विक्टोरियन लिबरल एमपी की राज्य के अटॉर्नी जनरल से बहस हो गई है। हाल ही में हुए इस अपराध में 3 लोग रिचमंड में एक लग्जरी कार डीलरशिप में घुस गए और उसे आग लगा दी जिसमें अंदर मौजूद 2 क्लीनर बिना किसी चोट के बच निकले। संसदीय सुनवाई के दौरान लिबरल सांसद रिचर्ड री ओडोन ने अटॉर्नी जनरल

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: है कि सास ने ट्रिशा की मृत्यु के दिन लगभग 46 फोन कॉल्स की थीं। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हालिया फेडरल बजट में हुए माइग्रेशन से जुड़े बदलावों की। पीआर की राह देखते हुए लोगों के लिए कई सवाल तो उठ खड़े हुए हैं, यानी कि छात्रों और स्किल्ड माइग्रेंट्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑनशोर ऑफशोर आवेदकों के जो अवसर हैं, वर्क वीजा के जो रुझान हैं और प्वाइंट टेस्ट, तो इन सब में जो बदलाव हो सकते हैं उसी पर आइए जानते हैं इन सभी बातों पर नबील हसन के साथ इस अगली रिपोर्ट में।
3: एक 185,000 का परमानेंट माइग्रेशन कैप, स्टूडेंट वीजा स्क्रूटनी के लिए लगभग $20 मिलियन का प्रावधान और ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी। 12 मई को आए फेडरल बजट में माइग्रेशन को लेकर किए गए ये ऐलान ऑस्ट्रेलिया में पीआर की राह देख रहे हजारों एस्पिरेंट्स के लिए क्या मायने रखते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन माइग्रेशन चेंजेस का असर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और स्किल्ड माइग्रेंट्स पर किस तरह पड़ सकता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आकर शाह, जो एक सॉलिसिटर हैं और इमिग्रेशन लॉ में स्पेशलाइज करते हैं।
4: थैंक यू नबील।
3: आकर्ष वर्ष 2018 में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे और अब माइग्रेशन लॉ के क्षेत्र में काम करते हुए इस सिस्टम को करीब से समझते हैं। ये रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की जा रही है, आइए सुनते हैं इसका पहला भाग। आकर्ष जी, सबसे पहले 12 मई को जो फेडरल बजट पेश किया गया है उसमें माइग्रेशन को लेकर कौन कौन से अहम ऐलान रहे और ओवरऑल आप इन रिफॉर्म्स को किस नजरिए से देखते हैं?
4: ओवरऑल मैं ये रिफॉर्म्स को काफी पॉजिटिवली देखता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आप ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम का लास्ट 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखो, अगर तो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम ये हुआ है कि बहुत सारे हाईली एडुकेटेड लोग हैं बट नॉट नेसेसरीली कि वो सारे हाईली स्किल्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया का फोकस अब ये बन रहा है कि स्किल शॉर्टेज जो है उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया जाए। और स्किल शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए अभी जो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं कि अगर एक एग्जांपल दो, लास्ट 10 साल में मान लो 10,000 सिविल इंजीनियर को इनविटेशन दिया होगा, पर वो 10,000 इंजीनियरों में से सिर्फ 1,000 लोग ही अपने फील्ड में काम कर पा रहे हैं। तो इस चीज को कैसे ब्रिज किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए जो रिफॉर्म्स आए हैं वो कि 70% ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा को बढ़ाया गया है, जो लूप होल्स मिसयूज होते हैं स्टूडेंट वीजा के या फिर जो परमानेंट टेम्पररीनेस है कि लोग एक वीजा से दूसरे वीजा पे चले जाते हुए उसको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। तो ये मेजर हाइलाइट्स है और मुझे लग रहा है कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन को बेटर करने के लिए एक पहल है।
3: अच्छा, ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दिए जाने की बात सामने आई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए इसे पीआर के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है?
4: 100% बेटर होंगे बट शायद इतने स्तर पर बेटर नहीं होंगे। उसका रीजन यह है कि पिछले 10 सालों में या आउट से 5 सालों में कोविड के बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं पिछले 5 सालों में वो भी अब तक के रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट नंबर्स पे है। तो ऑनशोर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी बट साथ साथ में कंपटीशन भी उतना ही है। और ज्यादातर अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इवन साउथ ईस्ट जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया उसकी बात करें तो वहां से पिछले 5 से 7 सालों में बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं। तो

0: डेफिनेटली स्कोप बढ़ेगा, बट उसके साथ साथ कंपटीशन भी उतनी ही है।
1: जी अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा स्क्रूटिनी की बात करें तो उसके लिए लगभग 19.8 मिलियन डॉलर्स एलोकेट किए गए हैं। क्या आप इसे अनलॉफुल या नॉन जेन्युइन एप्लीकेशंस को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, और क्या इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है?
0: इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट हो सकता है, और अगर आप पिछले 1-1.5-2 साल में जितने भी चेंजेस हुए अगर उसको हम ध्यान में रखें तो प्रैक्टिकल इसका जो भी इफेक्ट है वो ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो मास्टर्स करने के लिए आते हैं और फिर डिप्लोमा या कोई छोटे कोर्सेज में ट्रांसफर कर लेते हैं, उनका वीजा कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को बॉर्डर से वापस घर भेजा जा रहा है। बहुत सारे जो अभी बीच में फिलहाल ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर एक स्क्रूटिनी बिठाई थी, जहां पे हाईवे पेट्रोल ट्रक ड्राइवर्स को पकड़ रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर दो

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: फेस पे ही अगर असेसमेंट ना हो तो और रिफ्यूजल आए तो फिर वो अपील में जाता है और कहीं लोग तो अपील के प्रोसेस में जाते ही इसलिए कि टाइम मिल पाए तो अगर जो ये बजट अलोकेट किया है उसका अगर सही से इस्तेमाल हो कि जो अच्छे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन है उनको बुरे स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन के सामने अच्छे से असेस करके फिर डिसीजन दिया जाए तो क्या दो फायदे होंगे. एक जो अननेसेसरी डॉजी एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए वीजा डाल रहे हैं वो कम हो जाएंगे और जो अच्छे एप्लीकेशन है जिनको अभी के लिए फिलहाल ऐसी स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ रही है क्योंकि सब कुछ सही है बट फिर भी वीजा रिफ्यूज हो रहा है वो शायद उनका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा. तो इनिशियल लेवल पे अगर ये बजट का एलोकेशन हो कि ज्यादा केस ऑफिसर्स को बढ़ाया जाए या फिर केस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे केसेस को असेस करना है एंड बाइफर्केशन कैसे करना है तो डेफिनेटली ये बजट का सही इस्तेमाल होगा तो 100% इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट दिखेगा.
2: अगर हम ऑफशोर स्किल माइग्रेशन एलोकेशन की बात करें तो किन सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज को आगे प्रायोरिटी मिलने की संभावना दिखती है.
1: अगर ऑफशोर में से कोई ट्राई कर रहा है टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी अंडर स्किल्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रीम तो हेल्थ सेक्टर फिर इंजीनियरिंग फिर एजुकेशन कंस्ट्रक्शन इवन ICT. लोगों को लगता है कि IT अब खत्म हो गया बट ऐसा नहीं है. हमारे इस साल में कम से कम 6 या 7 IT क्लाइंट्स को इन्विटेशन आया है उसमें से 3 या 4 ऑफशोर भी थे. अब पर ऑफशोर में इस बार अगर देखा जाए तो उन्होंने क्लियरली ऐसा बोला हुआ है कि जो 55,000 जो सीट्स है ऑफशोर के लिए जो उन्होंने एलोकेट की है उसमें वो लोग प्रिफर करेंगे हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस पीपल. तो मुझे लग रहा है कि ऑफशोर में से उन लोगों को उनको ऐसा चाहिए जिनके पास सीनियर लेवल का एक्सपीरियंस हो जिन्होंने अपना करियर में थोड़ा बहुत कुछ प्रूव ऑलरेडी कर लिया हो और डिसेंट सैलरी पे हो. वैसे एप्लीकेशन जो या वैसे एप्लीकेंट्स जो होंगे उनको ऑफशोर में से शायद प्रायोरिटी मिलेगी रेदर देन एंट्री लेवल जो लोग हैं क्योंकि उनको अभी उनका खुद का ही करियर प्रोग्रेशन प्रूव करना बाकी है.
2: SBS हिंदी की इस विशेष रिपोर्ट में हम हालिया माइग्रेशन चेंजेस और उनके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तथा स्किल माइग्रेंट्स पर पड़ने वाले संभावित असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये रिपोर्ट 2 भागों में प्रस्तुत की जा रही है. इसके दूसरे भाग के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर. इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत.
3: तो श्रोताओं आप ये रिपोर्ट सुन रहे थे, पहला भाग आपने सुना और जैसा कि नवीन ने बताया कि अगला भाग हम आपको अभी सुनवाते हैं लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल. वैसे इतनी जो अभी तक आपने बातचीत सुनी उसमें क्या आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आप चिंतित हैं किसी चीज को लेकर, अवश्य हमसे संपर्क कीजिए और हमें अपने संदेश भी भेजिए 04397997767 पर. तो इस रिपोर्ट का अगला भाग सुनते हैं इस अंतराल के बाद.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career.

0: A path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बराल। श्रोताओं, इस अंतराल से पहले हम सुन रहे थे एक रिपोर्ट कि फेडरल बजट से जो माइग्रेशन से जुड़े बदलाव हैं उनका क्या असर हुआ है। तो आइए जानते हैं कुछ और बातें नबील हसन की इस रिपोर्ट के दूसरे भाग में।
2: SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट का दूसरा भाग, जिसमें हम फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन रिफॉर्म्स और ऑस्ट्रेलिया में पीआर की राह देख रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तथा स्किल माइग्रेंट्स पर उनके संभावित असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं आकर्ष शाह के साथ, जो इमिग्रेशन लॉ में स्पेशलाइज करने वाले एक सॉलिसिटर हैं। आकर्ष जी, आज भी कई लोग जॉब स्पॉन्सरशिप को पीआर तक पहुंचने के एक पाथवे के रूप में देखते हैं, क्या ये क्षेत्र अभी भी खुला हुआ है और क्या इसमें अवसर मौजूद हैं?
3: मेरे हिसाब से वो फील्ड अभी भी खुली है और कोई ऐसा मैंने देखने को नहीं मिला है मुझे कि स्पॉन्सरशिप्स कम हो गई है या नहीं मिल रही है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई भी प्लेसेस या कोई भी स्पॉट्स कम नहीं हुए हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। अब 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया इतना शायद पॉपुलर नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कनाडा, यूएस, बाकी बहुत सारे डेस्टिनेशंस थे, तो जो लोग थे जिनको माइग्रेट करना था उनका नंबर्स डिवाइड हो जाता था। 10 साल पहले मान लो 1000 स्पॉन्सरशिप जॉब्स होंगी तो उसके लिए अप्लाई करने वाले 5000 होंगे, तो 5 में से एक को मिल जाता था। अभी 1000 स्पॉन्सरशिप जॉब्स अभी भी है ही शायद, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट अप्लाई करने वाले 15000 लोग हैं, तो 1000 है और 15000 अप्लाई करेंगे तो 14000 को नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स इन द मार्केट एंड एवरीवेयर ऐसा ही एक माहौल पैदा होगा कि बहुत टफ हो गया है, नहीं हो रहा है। बट जिनके पास जेन्युइनली स्किल्स है, अभी जैसे अक्टूबर में ही एक मेरी दोस्त जो बिग फोर में काम करती थी इंडिया में, उसको सीधा जॉब, आप से तीन साल का एक्सपीरियंस, उसको सीधा स्पॉन्सरशिप मिलकर वो यहाँ पे मेलबर्न में आ गई ऑन द 482 वीजा। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हाँ सबके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सबके लिए पॉसिबल होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता और टेंशन ही नहीं होती कोई।
2: तो जब रिक्रूटर्स किसी रोल के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं, क्या उन्हें बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस मिलती हैं, और ऐसे में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है?
3: जैसे हम बहुत सारे रिक्रूटर्स के साथ भी काम करते हैं, हम बहुत सारे एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीजा हैंडल करते हैं, तो जब हम स्पॉन्सरशिप के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करते हैं ना, तो मान लो हमने शेफ की जॉब एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करी है ना, उसमें ऑफशोर एप्लीकेशंस 100, 150, 200 आती है, उसमें से 70% लोग का मोस्ट रिसेंट जॉब होता है आईटी फील्ड या फिर कुछ ही अलग सा, मतलब उन लोगों के पास कोई शेफ का एक्सपीरियंस नहीं है, बट बस जॉब देखी, ऑस्ट्रेलिया में जॉब है तो अप्लाई कर दो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स है उनका प्रोफाइल रिक्रूटर्स तक या फिर जो लोग डिसाइड कर रहे हैं उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि जो रिक्रूटर्स है जो जिनके साथ काम करते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्री से इतने सारे एप्लीकेशन आते हैं और वो लोग देखते ही नहीं है कि जॉब आईटी की है, आप शेफ हो या आप शेफ हो और आप आईटी में और शेफ की जॉब है, बस खाली जॉब देखा और अप्लाई कर दिया।
2: फेडरल बजट में पॉइंट्स टेस्ट को भी ऑप्टिमाइज करने की चर्चा हुई है, इस संदर्भ में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं और क्या इससे एप्लीकेंट्स के लिए कोई वास्तविक फर्क पड़ सकता है?
3: इट विल मेक अ डिफरेंस एंड आई होप इट डज, बिकॉज अगर आप पॉइंट्स टेस्ट सिस्टम जो अभी हमारा है, अगर उसको कोई भी लेमैन भी अगर देखेगा ना, कोई आम इंसान, तो वो भी बता सकता है कि ये कितना फ्लॉड और आउटडेटेड है। अब उसमें मान लो एक सिंपल सा एक बहुत ही वियर चीज है कि एक इंग्लिश टेस्ट स्कोर होता है, ठीक है, अगर कोई एप्लीकेंट इंग्लिश टेस्ट स्कोर पास करता है तो जो स्टूडेंट वीजा है उसके लिए उसकी वैलिडिटी है 2 साल, जो ग्रेजुएट वर्क वीजा है उसके लिए उसकी वैलिडिटी है 1 साल, जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप 482 या फिर परमानेंट एप्लीकेशन 189190491 है उसके लिए वही सेम इंग्लिश स्कोर वैलिड है 3 साल तक। अब ये सिस्टम किस लिए बनाई गई है और किस लिए लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं पता नहीं है, पर एक्सेप्ट करने के लिए भी चॉइस नहीं है क्योंकि इमिग्रेंट्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। अब जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है उनके साथ आप कुछ भी करो, जैसे भी रूल्स बनाओ वो लोग क्या करेंगे ना। और रही बात पॉइंट्स टेस्ट रिफॉर्म की, जैसे नाटी ट्रांसलेशन का जो 5 पॉइंट्स है, अब आज के ज़माने में हाँ कोर्ट लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे डेफिनेटली ट्रांसलेटर्स का यूज़ होता है, ट्रांसलेटर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर एक इमिग्रेंट को ट्रांसलेशन टेस्ट पास करके 5 पॉइंट लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर आपको अभी कुछ ट्रांसलेट करना हो तो आप चैट जीपीटी में या कहीं पे भी कोई भी एआई ऑनलाइन टूल में इजीली एकदम एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हो। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। अब जो लोग इधर पढ़ने आते हैं या फिर वर्क वीजा पे आते हैं उनको कम मैक्सिमम 2 साल का या 3 साल का वर्क वीजा मिलता है। अब वो लोग 2 या 3 साल के वर्क वीजा में ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस 3 साल का इकट्ठा ही कैसे करेंगे ना। तो लॉजिकली देखा जाए, अगर उनको या गवर्नमेंट को इमिग्रेशन सिस्टम को सच में अच्छा बेहतर बनाना है तो उनको पॉइंट्स भी उस हिसाब से अवॉर्ड करने पड़ेंगे। जैसे मेरे हिसाब से इंग्लिश के पॉइंट शायद कभी एक्सपायर नहीं होने चाहिए, और अगर होते भी है तो उसका कोई लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंसेस के लिए ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि जो जेन्युइनली स्किल्ड एंड टैलेंटेड लोग हैं, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स, ट्रेड्स में भी अगर है तो उनके लिए अच्छे पाथवेज बनेंगे।
2: एक आखिरी सवाल, जो लोग अभी पीआर की उम्मीद में हैं या आवेदन कर रहे हैं, उन्हें किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? उनकी स्किल्स, रीजनल अपॉर्चुनिटीज, वर्क एक्सपीरियंस या कोई और पहलू?
3: तो अपने स्किल्स पे काम करो। आई नो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट शायद हो सकता है, बट स्किल्स पे काम इसलिए करना है क्योंकि वही चीज है जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेगी बाकी से। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अब भी मास्टर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या फिर मास्टर्स ऑफ बिजनेस मार्केटिंग, ये डिग्री सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, ये डिग्री में से पास आउट शायद आपको 15,000 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, बट उसमें से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1,000 या 1,500 ही होंगे जिन्होंने इसकी सच में स्किल्स डेवलप करी और किसी एम्प्लॉयर के साथ काम किया और अपना करियर और प्रोफेशन में आगे बढ़ के या तो उस एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप लिया या तो फिर अच्छी सैलरी पे पहुंच के इनविटेशन लिया। एक सिंपल एग्जाम्पल है, मेरी एक बिजनेस एनालिस्ट क्लाइंट है, सबको ऐसा था कि बिजनेस एनालिस्ट को इन्विटेशन नहीं मिल रहा है, उसका अभी 1 मई पे 85 पॉइंट्स पे सब क्लास 190 विक्टोरिया का इनविटेशन आया है। वो यहाँ पे है और वो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ही आई थी, तो उसका इसलिए आया है क्योंकि उसने ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम इंटर्नशिप किया, फिर धीरे धीरे आगे उसका करियर बढ़ाया, फिर एक कंपनी में जॉब ली और फिर अच्छी सैलरी पे पहुंची। और विक्टोरिया में जैसे सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे स्टेट्स अगर आप देखो अभी तो सबको ये रिक्वायरमेंट तो है ही कि आप अपने अपने फील्ड में पिछले 3, 6 या 12 महीने से काम कर रहे होते हो। तो एक ये टिप है, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हो तो मेक श्योर कि आप अच्छी जॉब में हो, और द फ्यूचर आई सी इज प्रोबेबली एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स, क्योंकि इस साल 4,500 सीट्स एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप्स को ज्यादा दी गई है। और सेकेंड टिप, जिनको शायद प्रोफेशनल फील्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है और जिनको ट्रेड्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी अगर आप देखो तो टीआरए को या फिर स्किल असेसमेंट के लिए बहुत सारा बजट बढ़ाया है उन्होंने, क्योंकि बहुत स्लोनेस की वजह से लोगों का स्किल असेसमेंट आने में बहुत टाइम लग रहा था। तो या तो आप कोई हाई इन डिमांड ट्रेड्स ऑक्यूपेशन पे फोकस करो, या फिर आप अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी स्किल्स पे काम करके उसको पॉलिश करो, क्योंकि अगर आप जो फील्ड में हो वो फील्ड में आप अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो ना तो ऑस्ट्रेलियन वीजा बहुत मुश्किल हो जाएगा।
2: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
1: तो आपने सुनी ये बातचीत कि माइग्रेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है ये जो अभी फेडरल बजट आया। माइग्रेंट्स यानी स्किल्ड वीजा, पॉइंट सिस्टम और स्टूडेंट वीजा आदि पर क्या आपके मन में कुछ सवाल आए हैं तो हमें अवश्य बताएं। और हाँ, आगे हम कार्यक्रम में बात करेंगे कोहिनूर हीरे पर। तो यहां पर यह भी आपसे जानना चाहूंगी कि कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास कैसे पहुंचा, क्या आप जानते हैं? और इसकी जो भी आपके पास जानकारी है अवश्य हमें बताएं। भारत से रिपोर्ट भी आगे होगी। तो कार्यक्रम के साथ आप बने रहें, अपने संदेश भी भेजें। मिलती हूं इस अंतराल के बाद।
4: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे तो हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे पर, लेकिन अभी पहले भारत से हमारे संवाददाता विश्वरतन के साथ ये रिपोर्ट.
5: भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को सफल बताया है. विपक्ष की आलोचना को खारिज करते हुए भाजपा ने कहा है कि 5 देशों की हालिया यात्रा कूटनीतिक रूप से काफी सफल रही है. भाजपा का दावा है कि दुनिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर भरोसा जता रही है. केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने 5 देशों के दौरे को सफल बताते हुए कहा,
6: 5 देशों में 5 दिन में जिस प्रकार से भारत छाया हुआ था, जिस प्रकार से 5 देश में गर्मजोशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, अलग अलग कार्यक्रम हुए, मूल भारत के लोगों ने उनका सम्मान किया, एक प्रकार से 5 देश 5 दिन लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है, विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है.
5: भारत अमेरिका संबंध को लेकर भी सरकार आशान्वित है. अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो भारत के दौरे पर आ रहे हैं. कल यानी शनिवार को वे भारत पहुंचेंगे. उनकी 4 दिन की यात्रा को सकारात्मक बताते हुए पीयूष गोयल ने कहा,
6: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑफन कॉल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट his very close friend, and therefore I think the visit of Mr. Marco Rubio, the US Secretary of State, is extremely timely and reflects the growing partnership between the United States and India, which will provide newer and bigger opportunities to our youth, to our farmers, to our women, entrepreneurs, startups, businesses and industry. Open up huge investment opportunities in India for US capital. In fact, in the last 6 months alone, we have heard big announcements aggregating more than $60 billion.
5: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की बात कही है. गुरुवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा,
7: President Trump deeply cares about the relationship with India. President Trump deeply cares about Prime Minister Modi. It is one of the reasons that this relationship is on this track and we're able to move things at a much faster rate.
5: पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में ऊर्जा संकट की स्थिति नहीं है. सरकार लगातार लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दे रही है. कुछ शहरों में पेट्रोल की किल्लत होने की बात सामने आई है. पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में कहा,
8: कुछ पेट्रोल पंप पर और कुछ एरियाज में ये देखा जा रहा है कि जो बाइंग है वो इंक्रीज हुई है और काफी ज्यादा ग्रोथ भी देखी जा रही है. मंत्रालय में भी इसे एनालाइज किया है और ये पाया है कि कुछ इंक्रीज तो एग्रीकल्चर सीजन के चलते है. इसके अलावा कुछ इंक्रीज इसलिए भी है क्योंकि बल्क जो हमारा डीजल था, जो बल्क सप्लाईज थी, वो रिटेल पर शिफ्ट हो रही है. इसके अलावा प्राइस डिफरेंस है, परंतु इसके बावजूद भी हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज हैं और डिमांड के हिसाब से तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और हर पेट्रोल पंप पर सप्लाई को सुनिश्चित करने का हर प्रयास किया जा रहा है.
5: भाजपा और कांग्रेस के बीच एक और विवाद गहराने लगा है. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह

0: मंत्री अमित शाह को गद्दार बताया है। राहुल गांधी ने संविधान पर आक्रमण करने वाला इन्हें बताते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। इससे भाजपा तिलमिलाई हुई है। गुरुवार को कई जगहों पर राहुल गांधी के विरोध में प्रदर्शन हुए। दिल्ली पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा,
1: घटिया स्तर की शब्दावली प्रयोग में ले लेना, क्या वो अपने मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं? इस देश के मुखिया के लिए नहीं बोल रहे हैं ऐसे शब्द? मैं यदि कहूं कि परिवार का मुखिया, परिवार का प्रमुख, उसके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करता है तो कोई भी परिवार बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसी शब्दावली परिवार का कोई भी सदस्य बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपने परिवार के मुखिया के लिए हल्के स्तर का शब्द प्रयोग कर दे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
0: वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का पद किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता।
2: प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में, वो तमाम पार्टियों को जाता है। तमाम पार्टी के लोग जो होते हैं, देशवासी होते हैं, प्रदेशवासी होते हैं, उन सब की रक्षा करने का, उनके साथ में न्याय सुनिश्चित करने का उनका धर्म बनता है। दुर्भाग्य से अभी वो भावना मोदी जी में नहीं है। वो अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप सभी पार्टियों के जो विचारधारा के लोग हैं, आम लोग, उन सबके साथ में उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। ये आज भावना नहीं है, दुर्भाग्य की बात है।
0: राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा इसी भाषा का प्रयोग अपने विरोधियों के लिए करती आई है।
3: अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? ये तो जबान बनी है बीजेपी की, हर मुसलमान को, हर सेक्युलर इंसान को गद्दार कहना, ट्रेटर कहना, पाकिस्तान जाओ, अब तो कहते हैं ईरान चले जाओ। इसलिए मुझे लगता है जो जबान, जो बीज बीजेपी ने बोया इस मुल्क के अंदर, उसी वही बीज अब फल दे रहा है।
0: और अब चर्चा काकरोच जनता पार्टी की, जो अपने अस्तित्व में आने के 5 दिन के भीतर ही इंटरनेट पर छा गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना काकरोच से की थी। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन उनके इस बयान ने भारतीय काकरोच पार्टी को जन्म दे दिया। फिलहाल यह एक व्यंगात्मक प्लेटफॉर्म ही है, पर युवाओं में तेजी से पहचान बना रही है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या भाजपा और कांग्रेस के फॉलोअर्स से काफी अधिक हो गए हैं। इसका एक्स अकाउंट भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में उन्होंने नए नाम से इसे शुरू किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को अपनी नाराजगी, व्यंग और असहमति व्यक्त करने का मंच मिलना चाहिए। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: तो श्रोताओं, आपने भारत से रिपोर्ट सुनी, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया ही है कि कार्यक्रम में आगे हम कोहिनूर के ऊपर बात करने वाले हैं। आपसे जानना चाहती हूं कि कोहिनूर के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है, हमसे अवश्य साझा कीजिए, ताकि कुछ हमारे भी समझ में बढ़ोतरी तो होगी ही। लेकिन इन सबसे पहले क्यों ना सुनते चलें एक ये गाना भी।

0: Oye, tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, इस बीच हमारे श्रोता चेतन शाह जी ने कोहिनूर के बारे में काफी जानकारी मुझे लिख भेजी है और हमारे एक श्रोता ने अपनी परेशानी भी साझा की है कि ये जो नए बदलाव आए हैं उसमें कहीं पर पेरेंट वीजा के लिए जो वो लंबे अरसे से यानी पिछले 8 सालों से वो इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जानना चाहते थे। तो आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इसके बारे में हम अवश्य आगे चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। और कोहिनूर के बारे में मैं आपसे तो जानकारी लेना चाहती ही थी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ जानकारी लेते हैं और फिर आप बताइएगा।
7: मैं हूं अनीता बरार। दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित हीरो में शामिल कोहिनूर कुछ समय पहले फिर से सुर्खियों में आया जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने अमेरिका के दौरे पर आए किंग चार्ल्स तृतीय से कोहिनूर को भारत लौटाने की अपील की। वैसे भारत में 1950 के दशक से समय समय पर कोहिनूर की वापसी का मुद्दा उठता रहा है। कोहिनूर का मूल भारत की गोलकुंडा खदानों में माना जाता है और कुछ मान्यताओं में इसे भागवत पुराण की मणि से भी जोड़ा जाता है। कभी कोहिनूर मुगल बादशाह शाहजहां के मयूर सिंहासन का हिस्सा था, फिर ये ईरानी और अफगान शासकों के बाद महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य के पास पहुंच गया। तो आज बात की है विक्टोरिया में अर्जुन रैना जी के साथ, जिनके पूर्वज उस समय के गवाह रहे जब कोहिनूर ब्रिटेन के पास गया, और वो बताते हैं।
8: जो ये कोहिनूर है इसका ये अब महाराजा रंजीत सिंह के पास अफगानों से कैसे आई वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ उसमें ये था कि ये ट्रीटीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जो युद्ध लड़ा जा रहा था जिसको कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ये 1845, 1846 और फिर 1848-1849 के करीब है। तो इसमें समझौते कई दो तीन समझौते किए गए। एक जो सबसे पहला समझौता था वो था, और ये कंफ्यूजन बहुत है, हिस्टोरियंस में भी बहुत कंफ्यूजन है. ट्रीटी ऑफ अमृतसर एक ट्रीटी थी, फिर एक ट्रीटी ऑफ लाहौर दूसरी ट्रीटी थी, और फिर एक ट्रीटी ऑफ भैरोवाल तीसरी ट्रीटी थी. उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर के अंतर्गत अग्रीमेंट्स, एक अलग अलग एनेक्सर्स जैसे कहते हैं, वो ट्रीटी नहीं थी लेकिन एनेक्सर्स और अग्रीमेंट्स जोड़े गए. तो और उसके बाद फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो फिर सेकेंड लाहौर ट्रीटी तय की गई. तो ये जो अब जब, तो ये समझना जरूरी है कि ये ट्रीटीज क्या थी. जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी थी वो गुलाब सिंह डोगरा के साथ ट्रीटी थी, कश्मीर को अलग किया गया और कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ा गया था. इसीलिए हमेशा होता है जम्मू और कश्मीर बोला, जो डोगरा ने खरीदा पैसे देके 75 लाख, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी. ट्रीटी ऑफ लाहौर में वो थी दरबार के साथ, दिलीप सिंह के साथ और जो कोर्ट है उसके साथ ट्रीटी थी, और उसमें ये तय किया गया था कि ये जमीन ऐसे कट के कश्मीर और जम्मू में जाएगी और ये जमीन इन लाहौर दरबार के पास रहेगी, और फिर लाहौर दरबार का ये जुर्माना देगा और लाहौर दरबार के ये रूल्स होंगे, जैसे कि वो और यूरोपियंस मर्सनरीज और सोल्जर्स को नहीं रख सकते हैं, और लेकिन वो ट्रेड कर सकते. तो ये लाहौर सेकेंड ट्रीटी, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ था. तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बहुत हलचल थी लाहौर दरबार में, यानी कि जब तक दिलीप सिंह आए तख्त पे, 6 साल के दिलीप सिंह, यानी कि उनके पीछे उनकी मां रानी जिंदा, तब तक तो कई मौतें हो चुकी थी, जैसे खड़क सिंह की, जैसे शेर सिंह की, जैसे बीबी चांद कौर, ये बार बार ये बने तख्त पे बैठे और फिर ये हटाए गए. बहुत हलचल थी, मारकाट हुई, और एक मौत जो हुई थी वो थी रानी जिंदा के भाई जवाहर सिंह की, यानी कि दिलीप सिंह के मामा हुए ना. तो दिलीप सिंह के मामा को मारा खालसा ने ही, उनकी फौज ने, क्योंकि खालसा चाह रहे थे कि पिशौरा सिंह एक थे, वो भी वारिस थे, पिशौरा सिंह को बनाया जाए, लेकिन जो वहां के दरबारी थे और अंग्रेजों के साथ जो समझौता था वो था दिलीप सिंह को महाराजा बनाने का. तो इसलिए दरबार घबरा गया कि ये खालसा जो है, जो यहाँ अपनी फौज जो है ये संभलेगी नहीं, और इसीलिए उन्होंने फिर इनवाइट किया कंपनी के, आप कि आप एक गैरिसन यहाँ छोड़ो और आप अपना एक रेजिडेंट यहाँ छोड़ो, जो जब तक ये महाराजे अपने पैर पे नहीं खड़े होते, बड़े नहीं होते, उनकी भी रक्षा करेंगे. तो उम्मीद ये थी, दरबारियों की उम्मीद ये थी कि जैसे महाराजा रंजीत सिंह के साथ 30-35 साल

0: उन्होंने एक रिश्ता कायम रखा, स्टेबल रखा, और जैसे उन्होंने एक स्ट्रांग डोगरा राजा को पहचान के उसको एक उससे एक रिश्ता बनाया अंग्रेजों ने गुलाब सिंह के साथ, वैसे जब महाराजा दिलीप सिंह अगर वो खुद अपनी ताकत पे आ जाए, खड़े हो जाए और एक लाहौर दरबार स्टेबल हो जाए, तब तक अंग्रेजों के साथ ये वैसा रिश्ता बना पाएंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो खून खराब हुआ। तो फिर अंग्रेजों ने आके एक अग्रीमेंट में, मैंने ये पढ़ा कि पहले एक ट्रीटी ऑफ लाहौर एडिशन एक किया, एक अग्रीमेंट के अब आप संभाल नहीं पा रहे हो, अब हम टेक ओवर करेंगे, और फिर आपको उसमें एज अग्रीमेंट आपको कोहिनूर भी देना पड़ेगा। ये स्लाइटली हिस्टोरियन में कंफ्यूजन है कि ये बिटवीन ट्रीटी ऑफ लाहौर में फिर ये कब घुसा। ऑलमोस्ट वो सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर लिखी गई कि वो एक सिर्फ आदेश था ब्रिटिश सरकार का, कि ट्रीटी का मतलब है बराबरी का एक सॉवरेनिटी। लेकिन जो सेकेंड ट्रीटी ऑफ लाहौर है उसमें तो सॉवरेनिटी हटा रहे हैं, टोटल एनेक्सेशन हुआ। टोटल एनेक्सेशन यानी कि पूरा कब्जा लाहौर दरबार पर, महाराजा को 1.5 लाख रुपए शायद तय किए, 4 लाख रुपए तय किए, और रानी जिंदा को अलग कर दिया। तो ये जब पूरा कब्जा हुआ उसका एक सिंबॉलिक सिंबल ये था कि उसमें एनेक्सेशन, उसमें ये कोहिनूर की जब्ती भी उसमें आई।
1: तो जाहिर सी बात है अगर ट्रीटी में कोई चीज गई है तो वो वापस तो नहीं आ सकती थी,
0: इंटरनेशनल लॉ में आ गई। ये कहना कि लूटा कोहिनूर को लूटा नहीं, जो अयोध्या प्रसाद और दीनानाथ मेरे उनके पिता थे गंगाराम, वो उनसे रंजीत सिंह जी से रिश्ता शुरू हुआ, वो बहुत करीबी से, उन्होंने 1809 की ट्रीटी लिखी थी, और उनके पास जो उन महाराजा की मोहर होती है, जो स्टैंप होता है, उसके वो रखवाले थे, और उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी थे वो। तो कोहिनूर वॉज पार्ट ऑफ द ट्रीटी
1: जी, और अगर वो वापस आता तो वो भी किसी पार्ट ऑफ द ट्रीटी ही वापस आ सकता था।
0: बिल्कुल, दो सॉवरेन पावर को फिर मेज पे बैठ के फिर बड़े तरीके से लिखत पढ़त करके और फिर उसको दिया जाए। आप सही कह रही हैं, सही पकड़ा कि दिस इज हिस्टोरिकली थ्रू अ ट्रीटी, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज and respect and understand what treaties are, you know.
1: बस एक बात और मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि अयोध्या प्रसाद जी जो कि आपके पूर्वज थे, वो आपका उनके साथ क्या रिश्ता है?
0: मेरे वो परदादा के दादा है, यानी कि डायरेक्ट लाइन है, और हम कश्मीरी लोग थे जो महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में, तो जैसे गंगाराम जो थे और दीनानाथ जो थे वो वित्त मंत्री थे, वो फाइनेंस संभालते थे, और अयोध्या प्रसाद योद्धा थे, वो फौजी खास में उनका काम था, और उन्होंने अयोध्या प्रसाद वाकिया जंग जो उन्होंने 1845-46 के फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का क्रॉनिकल पर्शियन में लिखा था, और जो अब अंग्रेजी में ऑनलाइन भी उसके कुछ एक्सेप्ट्स हैं।
1: जी, तो उन्हीं के माध्यम से हम इतिहास के उन पन्नों को पलट भी पा रहे हैं। बात करके आपसे कोहिनूर के बारे में ये जो जानकारी आपने दी, के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगी।
0: नहीं, आपका धन्यवाद, आपने भी एकदम सही इसकी नोक पकड़ी कि ये ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता है।
1: जी, तो हम बातचीत कर रहे थे अर्जुन रैना जी के साथ में, जिनके पूर्वज उस समय मौजूद थे जब कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि पंजाब का विभाजन हुआ और उससे पंजाब और जम्मू कश्मीर दो भागों में रहा, वो पूरी की पूरी जमीन दो भागों में बट गई। उनके पूर्वज इस विभाजन रेखा को लगाने में भी मुख्य रूप से जुड़े हुए थे। तो कभी सोचा है कि इस विषय पर उनके साथ आगे बात करेंगे कि वो विभाजन रेखा लगाने का तरीका क्या था। वो इसलिए मैं जानना चाहती थी उनसे, और अवश्य जानूंगी क्योंकि हम भारत के विभाजन के बारे में भी जानते हैं और किस तरह से वो रेखा लगाई गई। खैर, उनकी बातें आगे करेंगे, अभी कुछ

श्रोताओं, आशा कर रही हूं कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, सभी अंश आपको पसंद आए होंगे। तो आपसे अगली मुलाकात तक के लिए अब आज्ञा ले रही हूं, अनीता बरार का नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, अज तुहानू जिदा पता है कि असी कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं, जिदे विच मैं सवाल पूछा सी कि आने वाली फिल्म चढ़दी कला विच जिहड़े चाइल्ड एक्टर्स ने उन्हां दा की नाम है, ते सानू जवाब बहुत सारे आए ने, पर एक मैं हिंट दे दिनी हां, उन्हां सारे जवाबां विच मेन हीरो हीरोइन की गल हो रही है, वह मेरा सवाल नहीं सी जी। मैं तुहानू पूछ रही हाँ कि चाइल्ड एक्टर कौन है, यानी कि जो दो छोटे बच्चे ने उस फिल्म विच, उस फिल्म का जो प्रोमो देखोगे तो तुहानू दो छोटे बच्चे भी दिखेंगे, उन्होंने बच्चों का की नाम है, यह है जी मेरा सवाल। तो जो सही जवाब देगा उन्होंने मिलेंगे जी फ्री पासिस इस मूवी के, यह मूवी रिलीज़ होगी अगले हफ्ते। तो सही जवाब तुसी लिख के भेज सकते हो SMS राही 0439799767 उत्ते, या फिर ईमेल कर सकते हो जी sbs.punjabi.program@sbs.com.au ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਚਾਈਲਡ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਏ।
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਣੋ sps.com.au/punjabi 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ SPS ਰੇਡੀਓ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: ਵਖਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ

तुफैल नियाज़ी होरां दी मुढ़ली पछाण थिएटर सी। वंड तों बाद तुफैल नियाज़ी होरीं पहला मुल्तान ते बाद विच इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए ते नाल नाल रेडियो पाकिस्तान ते 1964 विच पाकिस्तान टेलीविजन दे कयाम मगरों टेलीविजन ते वी बकायदगी नाल गाउंदे रहे। पाकिस्तान टेलीविजन दी नशरियात शुरू हुई ते तुफैल नियाज़ी होरां नूं पहला गुलकार होण दा एजाज वी मिलिया जो पीटीवी तों ऑनियर गए। इस तरह उन्हां दे बहुत सारे चांद वाले जो सिर्फ उन्हां दी आवाज दे जानू सन उन्हां नूं इस महान गुलकार नूं वेखण दा वी मौका मिलिया। पीटीवी ने ही तुफैल नूं तुफैल नियाज़ी बनाया। पीटीवी दे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर ने तुफैल होरां दी हजरत नियाज़ अली शाह नाल अकीदत होन करके उन्हां दे नां अगे नियाज़ी लाया ते ओ तुफैल तों तुफैल नियाज़ी हो गए।